0: your location for maximum music.
1: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111-1-7837।
7: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1000 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की।

0: अरे हो, क्या हुआ लाल पीक?
1: अरे कुछ नहीं मिराल, बोर हो रहा हूँ, कुछ करने को ही नहीं है मेरे पास।
0: अरे लाल पीक, ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बोर हो रहे हो? अपने आसपास देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। बादल देखो, तारे देखो, फूल देखो, बारिश देखो।

0: AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप है हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं भी आपके साथ साथ हूँ. और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप टॉपिक मैं बताऊँ. टॉपिक मेरा फेवरेट है आज क्योंकि आई लव दिस टॉपिक और मैं इस पे पहले भी शो कर चुकी हूँ. हर सेशन में जिसमें भी मैंने कहाँ पे काम किया है मुझे ये टॉपिक बड़ा पसंद आता है. और ये टॉपिक ये है आज का कि आप जो है वो मतलब अगर आप अपना नाम खुद रखते तो क्या नाम रखते. क्योंकि लोग अपना नाम खुद you know, हमें चॉइस नहीं मिलती जिंदगी के अंदर कि हम अपना नाम जो है वो खुद चूज करें. ये एक लाइक you know, थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं अच्छी बात भी है. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कहते हैं अच्छे नाम चूज करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नाम हमें पसंद नहीं आते. मतलब लिटरली वी आर लाइक यू नो वी लाइक नहीं यार कोई और नाम होता. लेकिन कुछ लोग जैसे अब किसी बच्चे का नाम है हशमत खान बचपन से उसका नाम हशमत खान है या समंदर खान है तो बस बंदा बोलते हैं यार तुम समंदर खान हो मतलब तुम कौन हो तुम समंदर खान हो. और तो कुछ लोगों के नामों से बड़े बहादुर होते हैं लेकिन असल में वो बिल्कुल बहादुर नहीं होते. ऐसे भी नाम होते हैं. तो अगर आप अपना नाम खुद रखते तो क्या नाम रखते. रहीम बलोच कह रहे हैं कि वो अपना नाम रहीम बलोच ही रखते. मैं खुद अपना नाम रहीम बलोच ही रखता. ब्यूटिफुल नाम है वेरी नाइस के यू लाइक योर नेम. इकबाल हुसैन साहब से भी मेरी इस बारे में बात हो चुकी है. कहते जी ये मुझे उनको भी अपना नाम पसंद है. और आप लोग भी बताएं कि आपको किसके नाम पसंद है और क्या कहते हैं. तो ये आप मुझे बताएं आप अपना नाम क्या रखते हैं खुद अपना नाम क्या रखते हैं. कैसे कभी लोग ना ड्रामों के नाम बड़े उनसे वो होते हैं. हमारा नाम जो है ना वो शहरियार शहरियार होना चाहिए. ओके और हमारे पास ये क्या कहते हैं एनजीक ने अपना भेजा है कि वो उनको जो है ना वो बड़ी तारीफें हो रही है एनजीक की वो सर्टिफिकेट. अच्छा चले ठीक है. तो ये आपको सर्टिफिकेट आपको तो नहीं मिला ये अच्छा अच्छा उन्होंने आपको थैंक यू बोला है वेरी गुड. एनजीक का नाम भी बहुत अच्छा है ठीक है. एनजीक इज ऑल्सो अ नाइस नेम. और आप लोग पूरा नाम नदीम जमान खान आई थिंक. उसके बाद तो आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे. और एक थर्ड वे भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको भेज देंगे आप 3636 पर. हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और ये जानने का कि आप अगर अपना नाम खुद रखते तो क्या नाम रखते मतलब क्या नाम रखते. कुछ लोगों को बिलाल नाम पसंद है कुछ लोगों को अपने वो पहले खवातीन डाइजेस्ट से लोग नाम बड़े अच्छे रखते थे. और ऐसे उनैजा शहरियार शहरियार लोगों को फिर अब कॉमन हो गया थोड़ा शहरियार नाम लेकिन पहले बहुत ही लाइक शहरियार नाम. अब जरियाब अब जेड से नाम बड़े वो जो है ना वो चल रहे हैं जामिल जायान. तो लोग बड़े फैंसी नेम पसंद करते हैं बच्चों. अच्छा बच्चा पैदा हो गया जी बच्चे का नाम वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार मतलब क्या नाम रखें. वो कहते हैं ऐसा यूनिक नाम रखना है हमने जो दुनिया में किसी का नाम ही ना हो. अच्छा मुझे ना छोटे नाम ज्यादा अच्छे लगते हैं छोटे छोटे क्यूट नाम. इतने लंबे लंबे भी लोग नाम रख रहे होते हैं कुछ लोगों को नाम ही नहीं बोलना आता. अच्छा ओके अच्छा. और आपका नाम व्हाट मीट यू मे आई लाइक माय नेम आई लाइक माय नेम समीहा. अच्छा है नाम तो ज्यादा समीहा लोग बोलते होते हैं ज्यादातर समीहा समीहा. एक्चुअली मेरा नाम है समीहा जो ज्यादा लोगों का नहीं है. लेकिन मैं अगर जरा रोमांटिक टाइप होती तो मैं जरा बारिश उजाला ऐसे नाम रखती सावन अजीब सा नाम होते हैं ये है सावन सैफी इस तरीके के नाम मैं रखती थोड़े फिल्मी नाम ठीक है. और लेकिन खैर अब जो भी नाम है अल्लाह ताला ने दिया है लेकिन कुछ लोगों को वाकई में नाम बदलने की बड़ी जरूरत है. मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे भी हैं ऐसे लोगों के. तो खैर आप बताएं आपका क्या सीन है आप टेंशन ना लें आप अपना बताएं कि आपको जी हाँ मैं आपसे बोल रही हूँ जो आज जो ब्लैक कपड़े पहने हुए तो आप बताएं कि आप ब्लैक शर्ट पहन के कहाँ जा रहे हैं वैसे भी और मौसम इंजॉय कर रहे हैं तो हमें बताएं. हमें मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे और आरजे समीहा के इंस्टाग्राम पे. समीहा नाम है मेरा SAMEEHA. तो आज हम नाम पे बात कर रहे हैं आइए सुनते हैं ये ट्रैक.

0: All right, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आज समीहा और आज हम बात कर रहे हैं नाम की कि आप अगर अपना नाम खुद रखते तो क्या नाम रखते हैं फूल कहते या उजाला हवा कहते या बारिश क्या कहते और हमारे पास नबील अहमद कह रहे हैं मैं अगर अपना नाम रखता तो कबीर रखता वैसे मुझे ना नबील नाम बहुत पसंद है पता नहीं क्यों आई लव दिस नेम नबील अच्छा आप और सोचे नबील को अपना नाम नबील नहीं पसंद देखिए ये होता है इंसान जो है ना उसको अपना नाम नहीं पसंद आता कहीं कहीं वो कहता अम्मा अब्बा कुछ रख लेते हैं अब जैसे मेरे भाई का नाम शेजर है शेजर अब वो अक्सर लोगों को पहले उसका नाम था फाइक फाइकुल्ला वो दादा ने रखा था फिर पता चला कि जी वो फाइकुल्ला सूट नहीं कर रहा तो नाम रख दो उसका नाम रख दो शेजर अब शेजर लोगों को बोला जो है ना वो अजीब तरीके से लोग बोलते हैं कोई शाजर बोलता है कोई शेजार बोलता है और अमेरिका में तो पता नहीं उस नाम का क्या हशरी किया होगा उन लोगों ने तो मुश्किल नाम है शेजर लेकिन हाँ यूनिक है हमें आदत हो गई अब शेजर लेकिन मेरे बस में होता तो कोई आसान नाम होता जो लोग आराम से ले पाते खैर तो आप बताएं कि आपका क्या सीन है आपको अपना नाम पसंद है या आप कहते हैं छोड़ो यार कोई और बंदा नाम रख ले और आई डोंट नो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ है कि नहीं पाकिस्तान में क्या है वैसे भी अजीब अजीब यहाँ पे अपना नाम ही सही वो जो NIC के अंदर नाम ही सही नहीं रखवाते लोग वो कहते हैं भाई किसका नाम रख दिया आपने कभी फादर का नाम ही साइड में नहीं लिखा वो चक्कर लगाते जाओ कि जी प्लीज चेंज करा दो नाम है लेकिन तो वहां पर अगर सोचा कि किसी को अपना नाम चेंज कराना है कि मुझे अपना नाम नहीं पसंद मतलब मैं अपना नाम ही चेंज करा रहा हूँ है ये क्या आप मेरा नाम आपने रखा है ये उल्ला भट्टी और पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों को अपना सरनेम नहीं पसंद होता है और अच्छा मजे के भी सरनेम्स होते हैं मुझे वैसे ये सरनेम बहुत अच्छे लगते हैं जैसे कि मेरे एक दोस्त का नाम था मोहम्मद अली मिल वाला मैंने कहा यार काश कि मेरे नाम के साथ भी होता मिल वाला मतलब यू नो कि सबको बचा मेरी मिले हैं मैंने हम उससे पूछा मैं कहा मोहम्मद अली तुम इतने अच्छे हो यार तुम्हारा नाम होना चाहिए मोहम्मद अली दिल वाला तो हम उसको मोहम्मद अली दिल वाला कहते हैं तो ऐसे और लोग के नाम होते हैं बंदूक वाला कराची वाला बोतल वाला तो ये वाले नाम मुझे बड़े पसंद है मेरे साथ कोई भी वाला नहीं है पता नहीं अजीब सही है कुछ सीन खैर आप लोग मुझे मैसेज करें आपका इंतजार रहेगा अपने मैसेज बॉक्स में जाएं टाइप करें के HI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको भेज देंगे 3636 पर या मुझे बड़े इत्मीनान से बड़े सुकून से मेरे पेज पर इंस्टाग्राम पे भी हूं मैं और फेसबुक पे भी मैं पाई जाती हूं RJ समिया से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका फेवरेट नाम कौन सा है और अगर आप अपना नाम खुद रखते तो क्या रखते मिलते हैं इस ब्रेक के बाद
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो
2: अहमद हटो वहाँ से
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
4: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
5: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
6: This program is brought to you by
7: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja,
8: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
9: Like us on facebook.com/FM247365.

0: FM 100 traffic update.
1: अपडेट के साथ मैं हूँ फरूख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफ एम 100 को मिला हुआ के मुताबिक जौहर मोड़ से वो ट्रैफिक जो इस वक्त आ रहा है शारा फैसल डिग रोड की जानी, उस पर ट्रैफिक का इस पर दबाव देखा जा रहा है। जबकि गरीबाबाद से वो ट्रैफिक जो आ रहा है ईसा नगरी और वहां से स्टेडियम रोड से शारा फैसल कारसाज की जानब आ रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का कोई दबाव है। इसके साथ साथ अख्तर कॉलोनी सिग्नल से वो ट्रैफिक जो पंजाब चौरंगी की जानब जा रहा है वो भी कुछ स्लो मूव कर रहा है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों में सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: This traffic update was brought to you by FM 100. It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
2: bhul ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed. हटू वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: Bank, easy वाला bank.
1: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 03111117837.
2: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: This program is brought to you by
4: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja,
3: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसानात से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अज़्मे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान.
6: मुफादे आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
9: हमने अपना कुछ 3 बार मौत देखे
10: टाइम से ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
11: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
8: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
12: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
8: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जरा इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
13: FM 100 like us on Facebook.com/FM247365 FM 247365.
14: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
15: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
14: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
16: जी
0: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
15: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
14: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
0: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
15: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
14: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
15: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
14: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

ऑलराइट जी, आप बात कर रहे हैं नाम की कि अगर आप अपना खुद नाम रखते तो क्या रखते और क्या आपका नाम आप पे सूट करता है और आपका पसंदीदा नाम क्या है वगैरह वगैरह. तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमें तो हमें बता दें इस बारे में. ऑलराइट, और आप लोगों के पैगामात हैं. अजीक ने मेरे नाम की जो है ना वो क्या कहते हैं मतलब बताया है कि बहुत हिस्ट्री के अंदर बहुत अजीम लोग थे मेरे नाम के. समीहा अयूब, वाइडली नोन एज द लेडी ऑफ द अरब थिएटर, अ फेमस इजिप्शियन एक्ट्रेस ऑनर्ड अक्रॉस द अरब वर्ल्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू परफॉर्मेंस आर्ट्स. और उसके अलावा समीहा अल शरीफ इजिप्ट के अंदर फर्स्ट फीमेल फिल्म डायरेक्टर थी. तो समिया नाम के लोग काफी चीजों में फर्स्ट थे और फनून लतीफा से ही ताल्लुक है समिया नाम के लोगों की. ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी है. मेरा भी ताल्लुक फनून और लतीफा दोनों से है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एनजीक, थैंक यू, दिस इज रियली स्वीट. ओके, और इसके अलावा आप लोगों के भी मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं. आप लोग बताएं हमें कि आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको अगर अपना नाम आप खुद रखते तो क्या नाम रखते. क्या आप अपना नाम नज़ीर खोसो ही रखते और तो और भी नाम होते हैं दुनिया के अंदर, तो चूज़ अगर आप कर पाते तो क्या रखते. अच्छा, इकबाल हुसैन साहब का मैसेज आएगा. अस्सलाम वालेकुम समिया जी, मुझे अपना नाम पसंद है. दो अजीम हस्तियों का नाम का मुरक्कब, इकबाल अ ग्रेट पोएट, हुसैन एक काबिल एहतराम शख्सियत. आई एम हैप्पी विद दिस नेम, ये मेरे ताया ने रखा है था. अच्छा, अच्छे ताया हैं भैया आपके. और अक्सर ताया वैसे इतने अच्छे होते नहीं है, कुछ ताया हो से फिल्मों के. अच्छा, देखिए ड्रामों के अंदर ताया और ताई को बड़े जालिम दिखाया जाता है. और क्या कहते हैं, अभी ड्रामा भी आ रहा है बस तेरा साथ, उसमें ताया ताई बड़े जालिम है. और हालांकि ताया ताई को ज्यादा स्वीट होना चाहिए क्योंकि उनके छोटे भाई के बच्चे होते हैं ना, छोटे भाई के बच्चे, पता नहीं क्यों. और इसी तरीके से फुप्पीज, फुप्पीज आर विलन्स और खालास आर ऑलवेज नाइस. तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं खाला भी कम होता है ऐसा, फूफियों को ज्यादा विलन दिखाया जाता है पता नहीं क्यों. हालांकि आई थिंक भाई के बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए मोहब्बत, हम जितनी बांटेंगे उतना अच्छा होता है. और लेकिन रिश्ते जो है ना वो बस प्यार से चलते हैं और प्यार वाले नामों से चलते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आ गई जहर आंटी, मतलब कुछ लोग कहेंगे नाम ही इतने बुरे रखे होंगे, आ गया सड़ू, आ गया आ गई जहर आंटी. सबने ना अलग अलग नाम जो है ना वो रखे होते हैं पीछे. तो आपकी जिंदगी में कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग आपको आपके पीछे, आपकी पीठ पीछे अच्छे नामों से बुलाएं. ये नहीं कि बोले आ गया यार, ये तो हर वक्त सड़ा ही रहता है. और अगर आप बॉस हैं तो बॉस जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं, तो अच्छे बॉस, उनके बॉसेस के तो बड़े नाम होते हैं. आपकी सोच है बेचारे, अगर बॉसेस सुन ले कि उनके इम्प्लॉयज ने या सबॉर्डिनेट्स ने जो है ना उनके क्या क्या नाम रखे हुए हैं, तो उनका दिल दहल जाए. ये चीजें ना पैसे से नहीं खरीद सकते कि लोग आपको प्यार से बुलाएंगे आपके पीछे. ये चीजें अर्न करनी पड़ती हैं, और पैसों से नहीं, अपने खुश इखलाकी से अर्न करनी पड़ती हैं कि लोग आपको अच्छे वाले नामों से बुलाएं, अच्छे वाले नामों से याद रखें जब आप इस दुनिया से चले जाएं. खैर, और खैर नाम से ज्यादा काम ज्यादा जरूरी होते हैं. तो मेरी नानी कहती थी बेटा नाम से जरूरी है कि आपका काम क्या है. और तो आपके यहाँ ये बड़ा ब्याज है. याया हमीद का मैसेज, आई लव माय नेम याया, आई चो बिकॉज याया इज द ओनली नेम चोजन गिवन बाय अल्लाह. वाकई में याया नाम बहुत प्यारा है. याया अलैहि सलाम जो है उनके पैदा होने से पहले ही, उनके आने से पहले ही दुनिया में बिशारत दे दी गई थी उनके फादर को कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम याया होगा. और बहुत ही नेक और बहुत ही मिलनसार, उनकी इतनी तारीफें की गई हैं हजरत याया अलैहि सलाम की कि क्या ही बात है. तो याया इज सच अ ब्यूटिफुल नेम. और मेरी अपनी कजन ने भी अपने बेटे का नाम याया रखा है. तो याया इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल नेम, बोलने में भी बहुत प्यारा लगता है याया. और खैर, आप लोग मुझे मैसेज करें जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है. आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप खुद अपना

नाम रखते तो क्या नाम रखते। हमें आप मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पे। और हम प्ले कर रहे हैं अभी आपका अंग्रेजी गाने का टाइम होता है ये दोस्तों, तो अंग्रेजी गानों में हम प्ले कर रहे हैं यू2 का गाना, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस जगह जाना चाहता हूं मैं जहां पे गलियों का कोई नाम नहीं, विद द स्ट्रीट्स हैव नो नेम्स। आइए सुनते हैं।

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.
7: 100 FM.
8: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटू पीछे भागो।
2: अहमद हटू वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जास कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास कैश है ना।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: to the bank. Easy wala bank.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
3: This program is brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
5: And Sarsabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
8: This is

0: जी आप सुन रहे थे सजाद अली की कमाल मैजिकल आवाज में ये गाना तेरा नाम, और आप लोगों के पैगामात भी हैं मेरे पास, नाम वाले आप बता रहे हैं मुझे कि आप क्या नाम रखते अगर कोई नाम रखते अपना खुद से। एक मूवी भी, एक किताब है द नेम से एक, और उसमें उस बंदे को अपना नाम नहीं पसंद होता जो उसके अब्बा ने उसका नाम रखा होता है, और इंडियन फैमिली होती है, दे मूव टू अमेरिका तो उसको अपना इंडियन नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, फिर वो जाके अपना नाम चेंज कराता है बाय लॉ कि मुझे अपना नाम चेंज करवाना है, लेकिन बाद में जो उसे पता चलता है कि उसके अब्बू ने किस मोहब्बत से उसका नाम रखा है, क्योंकि ये जो आपके नाम होते हैं ये माँ बाप के तोहफे होते हैं, भले आपको पसंद आए ना आए लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से रखे जाते हैं, जब आपको नहीं पता बेबी होते हैं, और तो ये नामों का बड़ा खूबसूरत एक याद है, एक कोई स्टोरी है, जैसे आबिद अली ने अपनी स्टोरी सुनाई, इस तरह नामों के पीछे स्टोरी होती है, किसी को कोई नाम पसंद होता है, फूफी रख देते हैं, मेरा नाम मेरे फूफा ने रखा क्योंकि वो अरेबिक के प्रोफेसर थे, और तो फिर मेरी अम्मी अबू ने उनसे मशवरा किया कि क्या नाम रखें, तो उन्होंने मेरा नाम रखा समीहा, और अच्छी बात है बहुत ज़्यादा समिया लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन असल नाम समीहा है तो अच्छा नाम है, और इसका मतलब भी अच्छा है, इसका मतलब है जेनरस, सखी, दिल की सखी, मतलब सखी होना चाहिए इंसान को मुझे लगता है, इसीलिए मुझे शायद कंजूस लोग बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब मैं सोचती हूँ कि कंजूस लोगों को बंद कर देना चाहिए कहीं पे, खास तौर पे आपका अगर बॉस कंजूस है या मालिक कंजूस है या कोई घर का बड़ा कंजूस है तो वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी ये वाली आपकी जीनी। तो खैर आप लोगों के पैगामात का मुझे इंतजार है, आप लोग मुझे अपना नाम वाला मैसेज कर सकते हैं, और अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका पैगाम, उसको भेज दें 3636 पर, या मुझे मेरे फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, आरजे समीहा मेरा नाम है, और हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो, अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत हुकूमत सिंध।
4: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1000 का डिस्काउंट पाएं, तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja, and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
7: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehr e qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ye zehr hamari ragon mein saayid kar chuka hota hai. Bhakti surur aur maze ka libada ode ye lanat गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

0: for watching. Lahore, Islamabad, Hyderabad, Brahmi, and Sun. Across the nation, this is FM 100.
1: FM 100.
2: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
4: अहमद हटू वहां से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
7: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
8: facebook.com/fm247365
9: fm247365। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वी

0: digital bank, Easy Wala Bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
4: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकी

0: बैंक इजी वाला बैंक।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 25 remarkable years.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। This public service message is brought to you by FM 100।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365.
5: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
2: Azra behen, zara baat to suno. हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually, hungi aap se khoob sari baatein. साथ ही साथ शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक और आज आपसे पूछेंगे एक अदद सवाल भी तो बहुत सारी चीजें होंगी तो ये सब कब होंगी तो भाई चैलेंज ही करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का एक सुपर एनर्जेटिक सा आगाज एक बहुत ही मजेदार से ट्रैक के साथ सो लेट्स बिगिन

0: 24/7, 365. FM 24/7, 365.
1: यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और जबकि बाकायदगी से आगाज हो ही चुका है तो ऑब्वियसली आपको तरीका कार बताएंगे कि कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, DRJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। वहां पर भी हमने स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया है। और आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग सवाल भी है आप लोगों से जो हम आपसे पूछेंगे। तो आपको पाकिस्तानी ड्रामास पसंद हैं, आजकल आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा चल रहा है और क्यों? भाई पाकिस्तानी ड्रामास जो है वो हमारे तो पसंदीदा हैं ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो पड़ोसी ममालिक में भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे ड्रामास के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। उसी के साथ साथ कुछ बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी होते हैं जिनसे आप बड़े कनेक्ट हो जाते हैं, एक आपको लगता है कि यार बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, ड्रामों की अगर जहां तक बात है ना, तो वो सिर्फ हम करंट ड्रामों की बात नहीं करेंगे, कोई ना कोई ऐसा पुराना ड्रामा भी हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है, आपको आज तक याद है। बहुत सारे ड्रामे ऐसे भी होते हैं जिससे एक अच्छा आपको मोरल मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, या फिर बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसा कोई ड्रामा है जो आपका मोस्ट फेवरेट रहा? तो आज आप अपने पसंदीदा ड्रामे के बारे में हमें बता सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप हमारे जो है वो ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, यानी कि RJ फातिमा खान की पेज पे बता दें, या फिर हमें 3636 बता दें कि जी कौन सा आपका फेवरेट ड्रामा है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इसी के साथ साथ लोकल भी कहती है, अस्सलाम वालेकुम लवली RJ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं, आपके क्या हाल अहवाल हैं? तो जरूर बताएं भाई आप लोग सब कैसे हैं, क्या हाल हवाल है आप लोगों के, क्योंकि ये भी हम जरूर जानते हैं आपसे कि भाई आप सबका दिन कैसा गुजर रहा है। एंड द गुड थिंग एंड द गुड फैक्ट इज दैट कि दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा क्योंकि शहर कराची का मौसम भी आज अच्छा है, बिकॉज कंटिन्यूसली 2-3 दिन से हम लोग जो है वो धूप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आज मौसम उसके बनिस्बत थोड़ा अच्छा भी है। तो मौसम की क्या अपडेट है, सवाले से भी आप तक आगाही फरहम करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि क्यों ना एक अदर ट्रैक की जाने भी जाया जाए, भाई बातें भी चलती रहें, साथ ही साथ मजे मजे के ट्रैक्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो बातों का मजा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। ट्रैक शामिल करते हैं, फिर वापस आकर आपके पसंदीदा ड्रामे के बारे में भी जानते हैं।

0: तो ट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं और साथ ही साथ हमने आपको सोचने का मौका भी दिया कि भाई आप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और आपका सबसे पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, अभी का है, पुराना है, जो भी है आप हमें बता सकते हैं। अब बहुत सारे ड्रामों की वाइब्स आपको लगता है कि आपकी जिंदगी से मैच हो रही है इसलिए आपको अच्छे लगते हैं। बहुत सारे ड्रामे देखने की वजह आपके पसंदीदा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, अक्सर औकात इसी वजह से ना वो कुछ ड्रामों की वजह से वो आपके बड़े फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस बन जाते हैं। ऑब्वियसली ये भी होता है और कुछ लोगों को आपको एक्टिंग करता देख के बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आतिफ असलम, इट्स अ वेरी वेरी गुड सिंगर, बट उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग के जौहर भी दिखाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक ड्रामा मतलब कुछ दिनों पहले तो नहीं, लगभग एक साल हो गया उनके उस ड्रामे को, तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अच्छा, मजे की बात क्या है कि एक्टिंग और सिंगिंग एक बहुत डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन उसमें अगर कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता हुआ नजर आए तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अगर बात की जाए फरहान सईद की, तो फरहान सईद जब से एक्टिंग करने लगे हैं, वैसे तो ही इज अ वेरी गुड सिंगर, लेकिन उसी के साथ साथ कई अरसे से अब उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी है, बट ही एक्ट सो वेल, आई रियली लाइक हिज एक्टिंग, क्योंकि बड़े अच्छे से वो एक्ट करते हैं और उनकी बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो लोगों को बड़े पसंद भी आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी उनका एक रिसेंट ड्रामा भी चल रहा है, बस तेरा साथ हो, तो वो भी एक अच्छा लग रहा है। और अभी उनके बहुत सारे हानिया आमिर के साथ आने वाला ड्रामा जो लोगों को आज भी बहुत पसंद है, और वो ड्रामा भी पड़ोसी मालिक में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। तो ये है कि भाई हमारे ड्रामे बहुत ही जबरदस्त होते हैं और हमारे साथ ही साथ जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं मौजूद, वो भी बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके ना उन ड्रामों में चार चांद लगा देते हैं। तो आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा रहा हमें जरूर बताएं। भाई लुक वर्ल्ड का भी मैसेज आ गया है और कहती हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे अच्छे लगते हैं, मैं आजकल इंतखाब देख रही हूं, उसमें एक लड़की है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, जबरदस्त, और मुझे जैबत ड्रामा ओके ये भी बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ मंथ्स पहले ही खत्म हुआ था और उसकी हीरो की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। ओके, तो भाई लुक वर्ल्ड ने अपने दो पसंदीदा ड्रामे बताए हैं कि एक में इनको एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, एक में एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से वो ड्रामे देखती थी। तो हकीकत है कि कनेक्ट होने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम उन ड्रामों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि अब आजकल के टाइम में ना ड्रामों का मजा तो है ही है, लेकिन उनकी ओएसटी को उससे ज्यादा पसंद किया जा रहा होता है, क्योंकि भाई ओएसटी में इतनी ज्यादा जो है ना वो एक वाइब होती है कि आप कनेक्ट हो जाते हैं उस ड्रामे से। सबसे पहले आपने सुना होता है उसका ओएसटी और उसके बाद आप वो ड्रामा देखना शुरू करते हैं, और बहुत सारे ड्रामों में आपको बहुत आप डेस्परेटली एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी से ना बस इसका ओएसटी रिलीज हो, तो जरा हम इसका ओएसटी देखेंगे या सुनेंगे, और फिर वो जो है वो बैक टू बैक आपके जो है वो चलता रहता है, आपको बड़ा पसंद आता है। और वाकई में हमारे ओएसटी बहुत अच्छे हैं, इसकी भी एक बहुत तवील मैं कहूंगी लिस्ट है कि जिसमें से अगर आपको चुनने को मिले तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि चंद आद ऐसे हमारे ओएसटीज हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, भाई इतने ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन उसमें से चंद ऐसे हैं जो आपके बड़े फेवरेट हैं। तो आपका पसंदीदा ओएसटी कौन सा है आप हमें ये भी बता सकते हैं। साथ ही साथ हम चलते हैं ब्रेक की जाने वाले हैं, वापस ट्रैक के साथ मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है तो उसे हम करेंगे शामिल, सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।
2: नशा परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है, ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या जरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: Ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: जी तो आज हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है आपके पसंदीदा ड्रामों के हवाले से. जी हाँ, कि भाई आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, कोई नया है, कोई पुराना है. बहुत दफा ऐसा होता है ना कि कोई एक ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वो आपको हमेशा याद रहता है, बाकी जितने भी ड्रामे आए गए लेकिन वो आपका एक फेवरेट होता है. तो आप पाकिस्तानी ड्रामा पसंद करते हैं, आजकल कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है और क्यों? सो हम कोई ना कोई रीजन भी आपसे जान रहे हैं कि वाई यू रियली लाइक दैट ड्रामा. ऑल राइट जी, हमारे पास मैसेज आ चुके हैं. ये भी रुकवल का मैसेज होगा. कहती है, मैं सारे ड्रामे तो नहीं देखती लेकिन बस खास खास देखती हूँ. कभी कोई क्लिप में अच्छा लगता है तो फिर वो ड्रामा देखने लगती हूँ. हाँ, ये बात आपने सही कही वाकई में, क्योंकि अब इंस्टाग्राम और फेसबुक का दौर है तो रील्स चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी ना बहुत सारे ड्रामों से हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो रील्स वगैरह देख के बहुत अच्छा लगता है. और आज मैं ड्रामों का जिक्र भी आप लोगों से कर ही रही थी तो मेरे जहन में इतने सारे अभी ड्रामे आए हैं कि अभी रिसेंटली जो बहुत सारे ड्रामे खत्म हुए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, और वो ड्रामे भी भाई बड़े ही कोई शानदार ड्रामे थे जिन्हें देखने के बाद बड़ा मजा आया, बहुत ज्यादा पसंद किए गए. ड्रामे तो ड्रामे, ओएसटी भी, एक्टर्स भी, लेकिन ये है कि बिल्कुल सही लुकवर्ल्ड ने कहा है, अगर इन्हीं का मैसेज आई एम श्योर, तो कि वाकई में क्लिप्स की वजह से भी ना आजकल हम ड्रामों की जाने मोटिवेट हो रहे होते हैं देख के, कि अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा ये भी है. अच्छा, क्लिप्स की वजह से ना ज्यादा मुझे लग रहा है कि आजकल अटैचमेंट हो रही है आपकी ड्रामों से. वो ड्रामा जो आपने कभी नहीं देखा ना, वो आप क्लिप्स की बदौलत देखना शुरू कर देते हैं. सो यस, यू आर राइट. अच्छा भाई, हमारे पास मैसेज आया है. कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. कहते हैं, आई एम गुड. 12 रबीउल अव्वल का ये खूबसूरत महीना भी हम सबको बहुत मुबारक हो. बिल्कुल जी, आपको भी बहुत मुबारक हो. कहते हैं, अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, बरकतें और खुशियां हम सबको हासिल हो. आमीन आमीन सुमामीन. कहते हैं जी, लंच में पुलाव है, आपके लंच में? द वेरी गुड क्वेश्चन इज दैट कि मेरे लंच में क्या है, और मेरे लंच में आई थिंक सो के एक कंफ्यूजन में आ गई हूं मैं. कोई बात नहीं, मैं भी आपको इस शो के दौरान ही बताऊंगी कि मेरे लंच में क्या है. मैं जरूर पता कर आपसे अपना लंच शेयर करती हूं. और कहते हैं कि मेरा जो फेवरेट ड्रामा है, यानी कि माय फेवरेट ड्रामा मेरे पास तुम हो. आजकल मैं ड्रामे नहीं देख रहा, बस यही इनका एक फेवरेट ड्रामा था. एक ट्रैक की रिक्वेस्ट करते हैं, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. ओके जी, तो रशीद खान ने लास्ट यही ड्रामा देखा है मेरे पास तुम हो, और ये ड्रामा भी भाई बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्रामों में से एक ड्रामा है. आई एम श्योर कि ऐसा शायद ही कोई हो जिसने इस ड्रामे को नहीं देखा, तो ये भी हम सबका एक बड़ा फेवरेट ड्रामा रहा है. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लुकपल के मजीद मैसेजेस को भी हम करेंगे शामिल. इसी के साथ साथ हम चलते हैं एक और ट्रैक की जाने जिसकी रिक्वेस्ट की है, तो चलो जी एंजॉय एंड देन वी विल बी राइट बैक. अपने पसंदीदा ड्रामों को याद रखें और हमें जरूर बताएं.

Yes, my friends, so I am back. हम आ चुके हैं वापस और आप लोगों के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है क्योंकि भाई बातों के बगैर तो जिंदगी अधूरी है और आज तो हम आपके पसंदीदा ड्रामों के बारे में आपसे जान रहे हैं कि भाई आपका फेवरेट ड्रामा जो है वो आजकल कौन सा चल रहा है जिसे देखकर आपको बड़ा मजा आता है या जरूरी नहीं है कि अभी का हो, कोई पुराना ड्रामा भी हो सकता है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो. तो डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आपका फेवरेट तरीन ड्रामा कौन सा है. इस पर तुम्हारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसका जवाब देने के लिए आप हमें 3636 पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. उसी के साथ साथ कराची वालों, 3 दिनों की धूप के बाद आज से कराची में एक बार फिर कराची के आसमान पर बादलों का डेरा है और तेज समुद्री हवाएं भी चल रही हैं और मौसम खुशगवार हो गया है और ये मौसम खुशगवार 2-4 दिन तक रहने की पेशन गोई भी मौजूद है. So I think that's a really really good news. और वैसे इस साल हमने अगस्त के महीने में को अच्छा एक्सपीरियंस किया और सिर्फ इस साल ही नहीं, अगस्त का महीना मोस्टली बहुत अच्छा ही रहता है क्योंकि बारिश हो या ना हो लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, अबर आलूद रहता है और इस मौसम से हम बड़े लुफ्त अंदोज हो जाते हैं और मजा ही आ जाता है. तो भाई बारिश चलो हो ना हो इसका इंतजार रहा हमें और हम इस बारिश से महरूम ही रहे इस साल तो कराची में, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो होगी कराची में भी बारिश. ऑल राइट जी, तो हमें मैसेज करते हैं फराज हाशमी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेरी गुड. लुकपल कहती हैं कि जी ये ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत कमाल है, कभी टाइम मिले तो आप जरूर इसका ओएसटी सुनिएगा. जी जरूर सुनेंगे. जरगुना भी हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं यस यस आपकी इज्जत इज सुपर लव्ड. ओके जबरदस्त, वैसे वाकई में आए ये ड्रामा जो अभी करंटली एयर हो रहा है ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आपकी इज्जत. ऑल राइट जी, तो बड़े जबरदस्त जवाबात हमारे पास मौसूल हो रहे हैं और सबके पसंद के ड्रामों के बारे में भी हमें पता चल रहा है कि भाई किसका कौन सा फेवरेट ड्रामा है. सो दैट्स रियली नाइस. ऑल राइट जी, क्योंकि अभी हमसे जरूर ने बताया कि जी उनका ये पसंदीदा ड्रामा है, तो चलें जी ऐसा करते हैं कि फिर उसी का ओएसटी जो है वो शामिल भी करते हैं क्योंकि भाई ये पसंद का ड्रामा भी है तो फिर पसंद का ओएसटी भी बनता है क्योंकि जब आपको ड्रामे पसंद आते हैं ना तो वो ऑन रिपीट आपके जहन में ना वो उसका ओएसटी भी चल रहा होता है. तो चलें जी इसे शामिल करते हैं फिर वापस आते हैं.

0: ओके तो भाई ड्रामों पर बात चल रही है, तो हमने कहा ठीक है जी, आपके पसंदीदा ड्रामों के ओएसटीज को भी हम लोग शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि भाई आप लोगों के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। मौसम पर अभी हमने ताजतरीन सूरत हाल आपको बताया कि जी कराची का मौसम अच्छा है लेकिन दर्जा हरारत आपको नहीं बताया, तो चलें जी वो भी आपको बता देते हैं। तो इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 30 और 31 है, कुछ मुकामात पर 30 आ रहा है, कुछ मुकामात पर 31 आ रहा है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत इस वक्त 32 है। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस, कराची वालों के लिए मौसम अच्छा है, बट द गुड थिंग एंड द गुड फैक्ट इज दैट कि शाम और रात के औकात में मौसम जरा और अच्छा हो जाता है, तो ये तो मैं कहती हूँ जी बहुत ही बढ़िया बात है कि मौसम अच्छा रहे तो मुझे लगता है कि इंसान का मिजाज सबसे पहले वो बड़ा बेहतरीन रहता है, और मिजाज का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मिजाज अच्छा रहेगा तो ना आपको गुस्सा आएगा ना कुछ, और ये वाला टाइम अभी इस लिहाज से अच्छा चल रहा है क्योंकि लोगों को जो है वो गुस्सा शुस्सा थोड़ा कम आ रहा है, सो दैट इज सो नाइस। तो भाई मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है जो हमारे पास आ रहे हैं, जिसे हम करेंगे शामिल, लेकिन उससे पहले एक अदद ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक। तो कहीं मत जाइएगा, बहुत सारी बातें और कुछ इंटरेस्टिंग अभी बाकी है जो कि आपको पता चलेगा कुछ देर बाद, तो इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है इसके लिए आपको सुनते रहना एफएम 100 पाकिस्तान, सुनते रहना प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल। वी विल बी राइट बैक इन फ्यू मिनट्स।
1: एफएम 100 टाइम चेक, it's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
3: आजाने जोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, FM 100 के सब सुनने वाले

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. You're in tune with the Lunchtime Special on the Big One. FM 100.

यस एवरीबॉडी, सो वी आर बैक। और भाई बहुत सस्पेंस क्रिएट कर लिया मैंने भाई, क्योंकि प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल होने से पहले हमने कहा था कि जी कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ सरप्राइज सा है सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम में जिसे हम शामिल करेंगे। तो अब मेरे लिसनर सोच रहे होंगे कि आखिरकार आरजे फातिमा खान कब बताएंगी हमें कि वो क्या चीज है, वो क्या बात है जिसके लिए हम एक्साइटेड हैं। तो जी हाँ, आपको गिफ्ट हैम्पर जीतने का मौका भी मिलेगा। जी हाँ, और ये कोई अक्सर औकात आपके साथ खेलते हैं डॉक्टर हमीद जनरल होमी और शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से आप सबके लिए एक सवाल। सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई वो 5 खुशनसीब कौन होंगे ये अब जानना पड़ेगा। तो उसके लिए सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब को चुना जाएगा। तो हमारा आज का सवाल बहुत ही आसान है और मुझे यकीन है कि आज के इस आसान से सवाल के जवाब देने वाले तो भाई बहुत सारे मौजूद होंगे। अब मजीद सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अब तो बता दें जी क्या सवाल है, बड़े एक्साइटेड हैं जवाब देने के लिए। सो डॉक्टर विल्मा श्रॉबे जर्मनी और डॉक्टर हमीद जनरल होमियो पाकिस्तान की बहामी शराकत और कामयाबी रफाकत को पाकिस्तान में कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं? आपके पास 4 अदद ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन ए 50 साल, ऑप्शन बी 75 साल, ऑप्शन सी 60 साल, ऑप्शन डी 70 साल। तो उसमें से जो भी सही जवाब है उसे आप 3636 पर मैसेज करें, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। बड़ा सा आसान सा सवाल है जी, जिसका जवाब आप हमें दे सकते हैं बासानी 3636 पे और फिर हमें पता चलेगा कि हु इज द विनर। अच्छा जी, साथ ही साथ सवाल हमने आपसे पूछ लिया है डॉक्टर हमीद जनरल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से, एक क्विज़ आपके साथ खेला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते चलें कि जब आप हमें सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि सही जवाब है, उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करिएगा ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए। अगर आपने सही जवाब दिया तो ऑब्वियसली आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। सो मेक श्योर कि अपने जवाब के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। तो भाई सवाल तो पूछ लिया है, चलें जी आपको सोचने का मौका देते हैं और देखते हैं कि किसका जवाब होता है सही। जब तक आप ट्रैक को एंजॉय करें।

0: ऑलराइट जी, तो सोचा आपने कि आपकी नजर में सही जवाब क्या है. जी हाँ, क्योंकि आपको चार अदद ऑप्शंस भी दिए गए हैं. सो डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो शोबिस सिंगल रेमेडी जर्मनी की जानिब से आप सबके लिए एक सवाल. सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब लोगों को गिफ्ट दिए जाएंगे. तो सवाल हमारा आपसे ये है कि डॉक्टर विल्मा शोबे और डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो पाकिस्तान की बहामी शराकत और कामयाबी रफाकत को पाकिस्तान में कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं. ऑप्शन ए 50 साल, ऑप्शन बी 75 साल, ऑप्शन सी 60 साल, ऑप्शन डी 70 साल. तो सही जवाब आपकी नजर में क्या है हमें जरूर बताएं. इसे बताने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे, और साथ ही साथ अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मैंशन कीजिएगा ताकि आपसे रब्ता करने में हमें आसानी हो. And I think that's a very nice and interesting question and everybody is so excited. तो आप लोग बिल्कुल excited होंगे और इसका जवाब आप हमें 3636 पे दे सकते हैं. अपना नाम और contact number जरूर mention कीजिएगा और आपकी नजर में जो भी सही जवाब है उसे हमें send कर दें. 4 अदद ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं. यार ये तो बड़ी मजे हो गए कि यानी कि आपको ज्यादा सोचने का मौका तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपको 4 अदद ऑप्शन भी दे रहे हैं, 50 साल, 75 साल, 60 साल या फिर 70 साल. तो सही जवाब आपकी नजर में क्या है हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार बेसब्री से और देखते ये हैं कि आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में कौन बनता है विनर. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने आप एक्साइटेड होंगे और कोशिश आपकी ये होगी कि जल्दी जल्दी आपके जवाबात हमारे पास मौसूल होना शुरू हो जाएं. बिल्कुल ठीक है जी, और हमारे पास जवाबात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. तो हमारे पास जो है वो आलिया का मैसेज आया है. आलिया कहती हैं ओके आप ही 70 साल हो चुके हैं, और आलिया आपने जवाब तो दिया लेकिन साथ ही साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन नहीं किया है. सो मेक श्योर कि तमाम लोगों से दरखास्त है कि मैसेज करते हुए अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर हमें सेंड करें ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें. जवाबात का सिलसिला जारी है, अब देखते हैं कि कौन होता है विनर. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस. अंटिल एंड अनलेस हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, आते हैं वापस ब्रेक के बाद.
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. अपनी कमाई से अपने घर की groceries लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now. This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

तो ट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं जी, क्योंकि वापस तो हमने आना ही था. एंड येस, वी आर टॉकिंग टू यू क्योंकि भाई हमने आज आप लोगों के साथ क्विज खेल रहे हैं और पांच खुश नसीबों की तलाश में हैं. जी हाँ, ये क्विज आपके साथ जो खेला जा रहा है डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी के जानब से खेला जा रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है. अच्छा भाई, जिसके जवाब हमारे पास मौसूल हुए हैं, हमें एक ने मैसेज किया है और सिर्फ एयर लिखा है लेकिन ना नाम लिखा है ना पता लिखा है, तो ये पता नहीं कौन है, तो हम इनके मैसेज को नहीं करेंगे शामिल बिकॉज आपसे कहा गया है कि अपना नाम और पता जरूर बताएं, मतलब नाम एंड साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मैंशन करें. अच्छा भाई, लुकवर्ल्ड भी मैसेज करती हैं, कहती हैं 70 साल ऑल राइट एंड द गुड थिंग इज दैट कि लुकवर्ल्ड ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, वेरी नाइस. मिसेस गफ्फार हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं 75 साल. ओके जी मिसेस गफ्फार, लेकिन मिसेस गफ्फार आपका कॉन्टैक्ट नंबर किधर है, आपसे किस तरह राबता किया जाएगा, सो ये मिसिंग है. जिन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर नहीं किया है उनसे बिल्कुल भी राबता नहीं किया जाएगा. सो अगेन आई एम मैंशनिंग दिस कि आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर जरूर मैंशन करें, अपना नाम और जवाब और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि हम आपसे बासानी कॉन्टैक्ट कर सकें. सवाल एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं. डॉक्टर विल्मा श्रॉबे जर्मनी और डॉक्टर हमीद जनरल होमियो पाकिस्तान की बहामी शराकत और कामयाबी रफाकत को पाकिस्तान में कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं, 50 साल, 75 साल, 60 साल या फिर 70 साल. अपना जवाब 3636 पर भेजें, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. मेक श्योर आपका अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और फिर सही जवाब, और इसे आपने कर देना है सेंड 3636 पे. तो ठीक है भाई, आपके मैसेजेस हमारे पास मौसूल हो रहे हैं जिसे हम साथ ही साथ शामिल करेंगे एंड दैट इज सो नाइस. तो मिसेस गफ्फार ने अब हमारा जो मैसेज है वो सही समय सेंड कर दिया अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, वेरी नाइस. तो ठीक है जी, और लोगों के भी मैसेजेस का हम इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि जी कौन है खुश नसीब आज का. तो भाई आसान सा सवाल है तो जवाब का इंतजार जारी है. अच्छा भाई, उसी के साथ साथ आज है 27th of August, तो मैंने कहा जरा आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी नजर डाल लेते हैं. तो भाई आज जो एक दिन मनाया जा रहा है उसका नाम है नेशनल बर्गर डे. ओके जी, बर्गर से भी बड़ी अटैचमेंट है आजकल के दौर में सब लोगों की, बिकॉज बर्गर बहुत मजे के लगते हैं. और पहले तो एक बड़े कॉमन बर्गर हुआ करते थे जैसे बीफ बर्गर, चिकन बर्गर और जिंगर बर्गर, और इसमें आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता था कि आप इसमें चीज एड ऑन कर लें या फिर बगैर चीज के खा लें. लेकिन अब तो बर्गर्स की इतनी ह्यूज वैरायटी मौजूद है कि पता नहीं कौन से स्मैश बर्गर, कौन से सॉस बर्गर, कौन से मशरूम बर्गर, पता नहीं लातादाद फ्लेवर्स के बर्गर जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं. और इसी वजह से बर्गर से वैसे ये भी है कि सबकी अटैचमेंट भी है, क्योंकि बर्गर का भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी मूड होता है कि चलो जी बर्गर खाते हैं. सो बर्गर से एक अजीब सी अटैचमेंट है सबकी, तो ये इंटरेस्टिंग बात है. तो ठीक है जी, आज इसका दिन मनाया जाता है और बर्गर भी आप लोग सबका आई एम श्योर फेवरेट ही होगा. लुपल कहती है मेरा आंसर मिल गया आपको. जी बिल्कुल, आपका आंसर हमें मिल चुका है. और इसी के साथ साथ जो है वो हमें फराज हाशमी भी मैसेज करते हैं. ऑल राइट फराज हाशमी, आप अपना जवाब दे सकते हैं, लेट्स सी, क्या पता आप ही विनर हो. तो इसके लिए बहुत आसान है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं 3636 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और सही जवाब जरूर मेंशन करें और इसी तरह आप जीत सकते हैं. मैसेज का सिलसिला जारी है, ट्रैक की जानब चलते हैं और फिर आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: ओके सो नाजिया हसन की आवाज आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ क्विज भी खेला जा रहा है. तो एक जानेब ये एक्साइटमेंट भी है, एक जानेब आपके पसंद के ट्रैक्स भी चल रहे हैं और दूसरी जानेब ये टेंशन भी है कि जी मेरा जवाब जो है वो सही हो. तो ये एक अलग सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट होती है आपको कि जी जवाब देने का शौक हम सबको होता है ऑब्वियसली, और बस कोशिश ये होती है सबकी कि जी शायद बस मेरा जवाब ठीक हो. ऑल राइट जी, हमारे पास अरीब का भी मैसेज आया है. अरीब ने भी अपना जवाब दिया है, कहते हैं आई होप सो कि मेरा जवाब बिल्कुल ठीक होगा. बिल्कुल ठीक है जी अरीब, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है एंड लेट्स सी कि आप ठीक हैं या नहीं. इसी के साथ साथ हमारे पास एक और गुमनाम मैसेज आया है. इन्होंने कहा है कि मेरी जानिब से ऑप्शन सी है और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन अलबत्ता कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिया है. चलो जी वेरी नाइस है, लेकिन अगर अपना नाम नहीं बताएंगे तो किस तरह आपसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा. सो प्लीज मेंशन योर नेम. उरूज भी हमें मैसेज करती हैं. उरूज कहती हैं कि जी मेरी जानिब से ऑप्शन डी है और उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा है और नाम भी. ग्रेट हो गया जी. आई कैन सी द एक्साइटमेंट, लोग एक्साइटेड हैं और जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं. बिल्कुल ठीक है जी, जवाब देते रहें और देखते हैं कि जी कौन होता है विनर. सो लेट्स सी, फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जाने बातें हैं, वापस ट्रैक के साथ सवाल को एक बार फिर दोहराएंगे इंशाल्लाह वापस आने के बाद. सो जब तक आप लोग हमें 3636 पर मैसेज करें और बताएं कि आपकी नजर में सही जवाब क्या है. चलते हैं ब्रेक की जाने बातें वापस ट्रैक के साथ.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe's Single Remedies, Germany.
2: Lunchtime, अपनी colleagues के साथ bill split करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
1: This program is brought to you by
3: Step School से foundation हो strong. Call now at 03111117837.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
6: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाएं,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
9: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
9: Midday break a blast.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: जी तो मेरे दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ वापस. आप लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ एक अदद क्विज खेला जा रहा है जिसके जवाब बात हमारे पास बड़ी तादाद में मौसूल हो रहे हैं. सो डॉक्टर हमीद जनरल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से आप सबके लिए एक सवाल. सही जवाब देने वाले 5 खुश नसीब को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे. और हमारा आज का सवाल आपसे यह है कि डॉक्टर विल्मा शोबे जर्मनी और डॉक्टर हमीद जनरल होमियो पाकिस्तान की बहामी शराकत और कामयाबी रफाकत को पाकिस्तान में कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं. 50 साल, 75 साल, 60 साल या फिर 70 साल. आपकी नजर में सही जवाब क्या है, इसके लिए आपने 3636 पर मैसेज करना है. अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए. और कुछ ही मिनट हम मौजूद हैं आपके साथ आपके सही जवाब को रिसीव करने के लिए. सो एज सून एज पॉसिबल आप जल्दी जल्दी हमें 3636 पे मैसेज करें और अपना जवाब हमसे शेयर करें. सो हमें अदील मैसेज करते हैं. ऑल राइट जी, अदील कहते हैं जी 75 साल और अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया है अदील ने. ठीक है जी अदील. इसी के साथ साथ हमें नाजिया भी मैसेज करती हैं और नाजिया कहती हैं ऑप्शन डी है 70 साल और उन्होंने भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है. दैट्स ग्रेट. नाजिया के साथ साथ हमारे पास जो है वो शाजिया का भी मैसेज आया है और शाजिया कहती हैं आप ही मेरी नजर में जवाब ये है. मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा है, ऑप्शन ए है. ठीक है जी. तो नाजिया का जवाब भी हमने नोट कर लिया है. और हमारे पास एक और मैसेज भी आया है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया और कहते हैं जी 60 साल हो चुके हैं. ऑल राइट. सो भाई सबके जवाब हमारे पास मौसूल हो रहे हैं. स्टिल यू हैव अ चांस क्योंकि जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है. इसी वक्त में अगर आपने जवाब दे दिया तो आपके जवाब को शामिल कर लिया जाएगा बिकॉज प्रोग्राम अख्तितामी मराहिल के बहुत करीब आ चुका है. सो डॉक्टर विल्मा शोबे जर्मनी और डॉक्टर हमीद जनरल होमियो पाकिस्तान की बहामी शराकत और कामयाबी रफाकत को पाकिस्तान में कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं. आपकी नजर में जो भी है सही जवाब उसे चुन लें और 3636 पर मैसेज कर दें. ऑप्शन ए है जी 50 साल, ऑप्शन बी है 75 साल, ऑप्शन सी है 60 साल, ऑप्शन डी है 70 साल. तो जो भी आपकी नजर में सही जवाब है उसे मैसेज कर दें क्योंकि बहुत ही कम वक्त रह गया है. अच्छा जी लुकवेल का मैसेज आया है, कहती हैं ओके ऑलराइट. कहती हैं जी नोट कर लीगा. ठीक है जी कर लेंगे ऑलराइट. और लुकवेल कह रही है एक जानब कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पता नहीं कि मेरा जवाब सही होगा या नहीं होगा. तो एक ये टेंशन भी है. बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि एक्साइटमेंट भी है कि प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना है, क्विज का जवाब भी देना है और एक जानिब ये टेंशन भी है कि जी क्या मेरा जवाब ठीक होगा या नहीं होगा. तो खैर जी इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म. आप लोगों के साथ हम क्विज खेल रहे थे डॉक्टर हमीद जनरल होमी और शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से और साथ ही साथ वक्त हो चुका है खत्म. तो सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब के जल्द ही उनसे राब्ता कर लिया जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि जी उनका जवाब ठीक है या नहीं. तो हमने उन खुश नसीबों को चुन लिया है. अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू वेट फॉर द कॉल. तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपका जवाब ठीक है या नहीं. अपना रखें भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें. इसी तरह प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल सुनते रहें. 12 से 2 के दरमियान होता है हमारा और आपका साथ मंडे टिल सैटरडे. सो रखें अपना ख्याल और दीजिए हमें इजाजत. अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Kudrat ka nizam tawazun par qaim hai.
6: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
7: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
8: हमारी जिम्मेदारी है.
9: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100
0: 31 साल. FM 100 आपकी आवाज़.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote, balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhein, dono ko samjhaein, chahe apna ho ya paraya. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। 365

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जास्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्ट कैश है ना?
2: 100 FM।
3: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
2: 100 FM।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: 100 FM।

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ.

0: digital bank, easy wala bank.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM247365

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: facebook.com/fm247365
1: fm247365 Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: FM 100 31 साल FM 100 aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
3: Assalamu alaikum Pakistan.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 100 FM।
4: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

0: your location for maximum music. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: fm247365. Back to back, back to back, only music, no art talk.
6: Only music, no art talk.
5: This is FM.

0: FM 100's time check. It's 5 p.m. This transmission is brought to you by
1: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।

0: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
1: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।

0: under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga Aur Bhul Ja
1: and Sarsabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादियामा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany.
4: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
6: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
7: तमाम बिल एक जगह पे हो जाए तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना?
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का

0: digital bank. Easy Wala Bank.
1: 100 FM.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
3: चम चम चम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
5: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।

0: Bank. Easy Wala Bank.
1: 100 FM.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: This program is brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
5: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
1: 100 FM.
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
7: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: 24/7/365.

जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।

0: Bank, easy wala bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Jija FM 100 100.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: The Bank. Easy Wala Bank.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैसकैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैसकैश है ना।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैसकैश ऐप नाउ।
7: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वी

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: 100 FM.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
3: छम छम छम, किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
4: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
6: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
11: FM 24/7 365 Bumper to bumper only on FM 100.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: 100 FM।
5: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना?
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
7: FM 247 365. FM 100।
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सोने। स्लीपलेस नाइट में कहूंगा खुशामदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक आज सजाएंगे महफिल कुछ शेर शायरी, कुछ प्यारी प्यारी सी गजलें, कुछ दिल की बात, कुछ आपकी बात, कुछ मेरी बात, कुछ हम सब की बात, यही सिलसिले रहेंगे। और इस महफिल में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कीजिए तो भी मेहरबानी होगी। बात दिल की है, दिल की ही बात करते हैं। दिल में बड़े वसवसे, बड़े खौफ, बड़ी मोहब्बत और बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, जिसका इजहार शायर मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। हमारे दिल की ही बातें जो हैं वो लफ्जों में पिरोते हैं। दिल कुछ भी हो जाए आस नहीं छोड़ता जिससे मोहब्बत करता है। आस का दामन जो है वो दिल पकड़े रखता है। हमारा महबूब चाहे हम पर जितना मर्जी जुल्म ढाए, बेवफाई करे, बेइज्जती करे, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद दिल में एक आस होती है। अरे ये इतना बेरुख सा हो चुका है या हो चुकी है, जरूर इसकी कोई वजह होगी। अपने आप को तसल्ली देता है दिल कुछ इस तरह कि हमें एक दिन यहीं से टूटेंगे, हमें ये खौफ था एक दिन यहीं से टूटेंगे, हमारे ख्वाब तुम्हारी नहीं से टूटेंगे। ये बददुआ तो नहीं है मगर ये लिख लो तुम, हमें जो तोड़ रहे हैं कहीं से टूटेंगे। तुम्हारे जैसे सितारे फलक से टूटते हैं, हमारी पहुंच जमीन तक जमीन से टूटेंगे। जो दे रहे हैं मोहब्बत में मशवरे मुझको, ये सब जहीन किसी महजबीन से टूटेंगे। जहां से मैंने लगाई है गांठ रिश्तों में, मुझे ये वहम है रिश्ते वहीं से टूटेंगे। आगाज किया जनाब एक अदद इंतखाब से, फजलुर रहमान साहब का ये इंतखाब है और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर सकते हैं आपके चाहे स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, जिसको सेंड करेंगे आप 3636 पर। और आप लोगों को वार्म अप करते हैं एक बहुत जबरदस्त सी गजल से, जब वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो।

वेलकम बैक कहेंगे। तेरी आस, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार हमेशा रहेगा। तू मेरे दिल का मकीन है, तू इस घर में हमेशा रहेगा। तेरी जुस्तजू, तेरी आरजू, दूर हो के भी मेरे पास तो तेरी चाहत पे मुझको यकीन है, तू हमेशा मेरा रहेगा। इंतखाब है जनाब महजबीन का, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब, और सबसे पहले हमारे पीर मोहम्मद इलियास नईम साहब ने मैसेज किया है और कह रहे हैं कि भाई वंडरफुल शो, माय बेस्ट विशेस विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद इलियास नसीम साहब, आपके नाम ही माशाल्लाह से बड़ा रोबदार किस्म का नाम है आपका। आयशा कह रही हैं प्लीज प्ले एजेंसी सॉन्ग। आयशा आप शो का मिजाज समझ रही हैं। सलाम कह रहे हैं यूसुफ भाई पापूस से और तमाम सुनने वालों को, और एफएम 100 की तमाम फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है, और कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल सबको मुबारक हो। और आपने शुरू में एक लाइन पढ़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और बहुत पसंद आई, बाकी शायरी भी कमाल की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान बाजार से रेहाना आ गई हैं और कह रही हैं अने भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें तुम घर तो ले लाए हो बज़्मे शायरी की महफिल में, अब ये भी बता

वेलकम बैक कहेंगे जनाब प्यार भरे दो शर्मीले नैन। हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ की जानिब से हमने संजू को डेडिकेट किया और उम्मीद करता हूं कि उनको पसंद आया होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब इनके मैसेज पर कि मैं बताइए गिरफ्तार हूं, तो इससे पहले कि हमारे तमाम सामाइन कुछ गलत सोचें, मैं बता दूं कि यादों में गिरफ्तार इंसान हो जाए ना, हाय हाय, और वो भी अच्छी प्यारी खूबसूरत यादें। अच्छा, वैसे मेरी कैफियत इस वक्त क्या है इस हवाले से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैंने ऐसे ही कहा यादों के हवाले से, तो यादों के हवाले से जो है कुछ बातें करूंगा आपसे, मगर उससे पहले आपके एक दो मैसेजेस शामिल कर लूं। मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर अभी आ चुकी हैं और कह रही हैं सलाम अलैकुम, और वाले साहब को, तमाम सुनने वालों को और संजू को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है। तो क्या खूब कहा है कि याद भी एक जीता जागता वैसे एहसास है। याद के हवाले से जब इनके मैसेजेस हैं और जिसे इंसान याद करता है वो सब आंखों के सामने ही होता है। जैसे हम उस पल एक बार फिर चले गए हैं। तशबीह दी है इन्होंने हिंदुओं के जन्म से और कहती हैं कि यार एक जन्म है, गुजरे वक्त को वापस लाते हैं दोबारा, वो पलों को जिंदा करते हैं। बहुत खूब कहा आपने, शायराना कुछ मिजाज लग रहा है माशाल्लाह से आपका। तो जनाब अब शामिल इशू करते हैं कुछ इंतखाब, और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन ने जो है वो थैंक यू भी कह दिया है। एक बहुत खूबसूरत इंतखाब नौरीन का, कहती हैं अश्क आंखों में छुपाते हुए थक जाता हूं, बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूं, पांव रखते हैं जो मुझ पर उन्हें एहसास नहीं, मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूं, बर्फ ऐसी कि पिघलती नहीं पानी बनकर, प्यास ऐसी कि बुझाते हुए थक जाता हूं, गम सारी भी अजब कारे मोहब्बत है कि मैं रोने वालों को हंसाते हुए थक जाता हूं, इतनी कब्रें ना बनाओ मेरे अंदर मोहसिन, मैं चरागों को जलाते हुए थक जाता हूं। मोहसिन नकवी साहब का इंतखाब इन्होंने भेजा है, बहुत खूब। और संजू का पहला इंतखाब जो है वो हम शामिल करते हैं शो में, और क्या कहती हैं, कहां गया भाई इंतखाब इनका। हां जी, कहती हैं कि रूह मन एक मुलाकात, कुछ मुलाकातें किस्मत की किताब में खामोशी से लिखी जाती हैं। उन्वान है एक मुलाकात, तो कुछ मुलाकातें किस्मत की किताब में बहुत खामोशी से लिखी जाती हैं। उनमें ना शोर होता है ना वादों की भरमार, बस एक एहसास है जो दिल में उतरकर हमेशा के लिए अपना घर बना लेता है। फिर दिल यही दुआ मांगता है कि एक लम्हा ऐसा है जब आप मेरे सामने हों, खामोशियां गुफ्तगू बन जाएं, शर्म से झुकी हुई पलकें मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इकरार बन जाएं, और मैं आपका हाथ अपने हाथों में लिए यूं महसूस करूं कि वक्त ने खुद चलना भुला दिया। फिर ना लफ्जों की जरूरत रहे ना किसी वजाहत की, क्योंकि कुछ रिश्ते निगाहों से लिखे जाते हैं और दिल की धड़कनें ही उनका तर्जुमा बन जाती हैं। मोहब्बत की कुछ घड़ियां पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती होती हैं, इंसान उन्हें जीता कम है मगर उम्र भर उन्हीं की खुशबू में जीता रहता है। ऐ रूहे मन, अल्लाह ताला हर सच्चे दिल को ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत, ऐसा मुखलिस हमसफर और ऐसी खूबसूरत मुलाकात अता फरमाए कि जिसके बाद दिल शुक्र से भर जाए
اور زندگی دعاؤں کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ روح من میرے ہم سفر، تم نہیں تو یہ زندگی نہیں، زندگی نہیں۔ بہت خوب انتخاب ہمیشہ کی طرح، اور ایک انتخاب اور ہے، وہ بھی ہم ابھی شامل کریں گے۔ اور ہمارے شجاعت مرزا شجاعت صاحب کہتے ہیں، واہ زبردست، کیا کہنے ہیں، پیار بھرے دو شرمیلے نین۔ سنجو اور نورین آبی کو 26 سال کی دوستی مبارک، اور سانگ ان کے نام کر دیجئے گا، یہ زرین بہنا کہہ رہی ہیں، بالکل کریں گے۔ اور ہماری ایک بہن ہے ریحانہ پاکستان بازار سے، ان کا میسج آیا تھا اور وہ انتخاب کے بارے میں بہت شاعرانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا جی کہ کچھ بھیجیے۔ کہتی ہیں کہ دل کر رہا ہے رشتہ اینے کی محفل سے جوڑ دیا زندگی کا رخ، بزم شاعری کی جانب موڑ دیا، کچھ اور لکھنے کی حسرت نہیں رہی، بزم شاعری تیرے نام لکھ کے قلم توڑ دیا۔ ارے واہ بھائی بہنا، آج آپ لگ رہا ہے کہ خود ہی اپنا انتخاب جو ہے وہ شامل کر رہی ہیں، بہت خوب بہت خوب۔

अब कुछ और शामिल करते हैं। अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, मुझसे दूर हो तो खुद को संभाले रखना। लोग पूछेंगे क्यों परेशान हो तुम, कुछ निगाहों से कहना, जुबां पे ताले रखना। न खोने देना मेरे बीते लम्हों को, मेरी यादों को बड़े प्यार से संभाले रखना। तुम लौट आओगे यकीन है मुझको, मेरे लिए कुछ वक्त निकाले रखना। दिल ने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें, मेरे लिए अपने अंदाज वही पुराने रखना। एक बहुत खूबसूरत गजल की जानिब आपको लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगी। समाप्त फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे आज जाने की जिद ना करो क्या बात है। फरीना खानम की आवाज और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर। प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ। मैसेजेस आप कर रहे हैं 3636 पर। बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की जानिब और हमारी प्यारी सी नौरीन मैंने क्या कह रही है? एक और इंतखाब भेज दिए हैं उन्होंने और उनका इंतखाब हम शामिल करते हैं। ये तवील है काफी लेकिन उससे पहले चंद मैसेजेस। और हमारे गुल साहब ने एक और नज्म और एक कता भेजा है वो भी शामिल करते हैं। और फरहीन कहती हैं उदासी है आवाज में हाय सब महसूस कर रहे हैं ऐसे ही है बस ऐवें। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। अच्छा जनाब आप लोगों के इंतखाब शामिल करते हैं और सबसे पहले हम जो शामिल करेंगे वो करेंगे संजू का। उन्वान है इसका सुनो कुछ दिल ने कहा। अगर तुम्हारे दो कदम पीछे हट जाने से किसी की जिंदगी आगे बढ़ रही है तो फिर दो कदम नहीं पूरा रास्ता छोड़ लो। किसी की खुशी के रास्ते में अपनी मोहब्बत का बोझ बनकर खड़े रहने से बेहतर है खामोशी से किनारे हो जाना। कभी कभी मोहब्बत का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं होता बल्कि उसे वहां जाने देना होता है जहां वो तुम्हारे बगैर खुश रह सके। अगर तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए बोझ बन गई है अगर तुम्हारे साथ रहना उसे खुशी की बजाय घुटन दे रहा है तो फिर अपनी जिद अपनी ख्वाहिश और अपने हक सबको एक तरफ रख दो उसे आजाद कर दो। हो सकता है तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देना जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला हो मगर याद रखो किसी को अपनी मोहब्बत में कैद कर रखना मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो कभी कभी खुद टूट कर भी दूसरों के लिए रास्ता बना देती है। बस एक बात हमेशा याद रखना जो शख्स तुम्हारे बगैर खुश रह सकता है उसे अपनी यादों का कैदी मत बनाओ। रास्ता छोड़ दो चाहे दिल हजार बार तुम्हें वापस जाने पर मजबूर करे क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं हमें मोहब्बत का मतलब समझाने के लिए आते हैं। वाह वाह। और अगर तुम्हारे हट जाने से उसकी जिंदगी समझ सकती है तो फिर अपनी मोहब्बत को आखिरी बार इज्जत देना खुद पीछे हट जाना खामोशी इख्तियार कर लेना और पूरा रास्ता उसके लिए छोड़ देना शायद यही मोहब्बत की सबसे तकलीफ दे मगर सबसे खूबसूरत कुर्बानी है। क्या बात की है भाई बहुत खूब बहुत खूब। और उन्वान था सुनो कुछ दिल ने कहा। ये काम है तो बहुत मुश्किल जो मैंने आपका ये खूबसूरत सा इक्तिबास पढ़ा है इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में दिल को समझाया गया है। बहुत ही प्यारी काबिले एहतराम नौरीन बहना दिल से आप के प्यार की मकरूज हूं दुआ है ये साथ हमेशा रहे इलाही आमीन। और जरीन नूर के लिए बहुत सा प्यार वाह वाह बहुत खूब। और अब बढ़ते हैं जनाब गुल साहब के एक कता और एक नज्म की जानिब। गुड़ की जानिब मकोड़े आ रहे हैं गुड़ की जानिब मकोड़े आ रहे हैं इश्क में सब भगोड़े आ रहे हैं। बहुत खूब। जब से देखा है उस परी रह को जब से देखा है उस परी रूह को
ख्वाब आंखों में दौड़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कथा है वो उनके इक्तिबास से काफी मिल रहा है। गुड़ की जानिब मकौड़े आ रहे हैं और इश्क में सब भगोड़े आ रहे हैं, ये उससे मिलता है पहले इस कथा का जो पहले दो मिसरे हैं। खैर जी, इनकी नज्म जो है उसका उन्वान है जिंदगी, और जिंदगी में ये क्या कह रहे हैं, अजब जिंदगी है, अजब रोशनी है, पहले वक्त नहीं था सोचने का, अब वक्त मिला तो पता चला कि जहन खाली है, सारी दस्तकें बेकार गईं, कुछ इस पार कुछ उस पार गईं, नफरतें जीत गईं, मोहब्बतें हार गईं, नहीं मालूम मुझे क्या हुआ था, कुछ याद नहीं, पढ़ा क्या था जहन के इस कोरे कागज पर, मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था। क्या बात है जनाब, क्या बात है। देखिए, शायरों का यही कमाल है कि मैं तकरीबन 5 मिनट ये तकरीर करता रहा कि खाली जहन के हवाले से कुछ मैंने अपने जहन के मुताबिक, अपनी कैफियत के मुताबिक कुछ बातें गईं, लेकिन गुल साहब ने वो तमाम बातें जो हैं इस नज्म में दर्ज कर दी। अजब जिंदगी है, अजब रोशनी है, पहले वक्त नहीं था सोचने का, अब वक्त मिला तो पता चला कि जहन खाली है, सारी दस्तकें बेकार गईं, कुछ इस पार कुछ उस पार गईं, नफरतें जीत गईं, मोहब्बतें हार गईं, नहीं मालूम मुझे क्या हुआ। वाह वाह, क्या बात है गुल साहब, जीते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और अब हम शामिल शो करेंगे जनाब हमारी प्यारी सी बहन नौरीन का इंतखाब, और वो क्या कहती हैं, कहती हैं, किसी की याद का मौसम मेरे अंदर ठहर गया, किसी की याद का मौसम मेरे अंदर ठहर गया, मैं अपने आप से मिलने चला था फिर बिखर गया, वो एक शख्स जो कल तक मेरा सुकून था बहुत, न जाने कौन सी दुनिया में जाके संवर गया, मैं अपने जख्म छुपाता रहा जमाने से, मगर जो दिल पे गुजरी वो चेहरे पर उतर गया। एक शख्स जो हंसता था मेरे लहजे पर, वही आज मेरे दिल में दर्द भर गया, मैं अपनी जात के मलबे में ढूंढता रहा खुद को, जो एक ख्वाब था आंखों का वो भी मर गया, चिरागे दिल को जलाए रखा था रातों तक, हवा चली तो मेरा हौसला भी डर गया, किसी के हिजर ने इतना बदल दिया मुझको कि आईना भी मेरी सूरत से मुकर गया, साजिद ये इश्क भी अजब इम्तिहान लेता है, जिसे पाने की तमन्ना थी वही दिल से उतर गया। भाई बहुत खूब, और आज के इंतखाब भी बहुत खूब आ रहे हैं। और मैसेज आया है जनाब, अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह आपको

आगे बढ़ते हैं जनाब मैसेज की जाने। गुल साहब क्या कहते हैं, दिल की कैफियत का मैं एक नाम हूं। क्या बात है यार, कहते हैं कि दिल की कैफियत का मैं एक नाम हूं, इसलिए तो हर जगह बदनाम हूं। बहुत खूब प्यारी सवा गुल जीती रहे लाला के लिए भी यही कहा है इन्होंने।

और जनाब जनाब जी बढ़ते हैं एक और प्यारी सी गजल की जानिब। और ये गजल जनाब हम डेडिकेट करते हैं, कहाँ गई ये गजल, ये रही गजल, ये डेडिकेट करते हैं जनाब हम जरीन की जानिब से संजू को। समाज फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे दीपक राग भाई, क्या बात है दीपक राग। अब जरा सा मूड चेंज करते हैं क्योंकि सत्तार भाई ने हमें बाहर बुलाया, तो वहां पर हमारे इंजीनियर भी मौजूद थे जिनका नाम है हमारे आसिफ भाई। तो थोड़ी ऐसे ही गुफ्तगू हुई तो मूड स्विंग हो गया। खैर जी, अमीन हमारे भाई आ गए हैं मेट्रोवेल से। अब दिल में महकते हुए जज्बे नहीं मिलते, उजड़े हुए गुलशन में परिंदे नहीं मिलते, क्यों चुपके से वो लोग उतर जाते हैं दिल में, जिन लोगों से किस्मत के सितारे नहीं मिलते। अरे क्या बात है, सलाम कहा है और मुश्क बहना को बी हैप्पी कहा है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। नदीम भाई, मैंने बहुत से छोटे छोटे अफसाने लिखे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही मंजरे आम पर लाऊंगा। ये जो अभी आपने पढ़ा है ये उन अफसानों में से एक था। एक पैराग्राफ में मुकम्मल बात, जैसे मैं एक शेर में मुकम्मल बात कर लेता हूँ, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है भाई, और बिल्कुल सही, बल्कि आप भेजिए। अच्छा, ये जो अब काफी अरसा पहले ये आपकी इस बात से मुझे याद आया कि मेरा ख्याल है इस बात को भी कोई 6 महीने से ज्यादा ही हो गया होगा, या साल के करीब हो गया होगा, तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया था अफसानों के हवाले से। और अफसाने जो है वो मैं शॉर्ट अफसाने, छोटे अफसाने जो है वो मैंने शो में शामिल करना शुरू किया था। एक सेगमेंट बनाया था मैंने और उसमें अफसाने जो है वो मैं पढ़ा करता था। किताबत से जो है वो हम तो वैसे ही बहुत दूर चले गए हैं। खैर, हमारी जो जनरेशन जो थी मिलेनियर्स की, उन जनरेशन को जो है वो फिर भी करीब रही है। जेन एक्स वाले भी करीब रहे हैं, लेकिन ये जो जेनजीज वगैरह हैं ये किताब से बहुत दूर हैं। सिर्फ उन्हीं किताबों के बीच में घूमते रहते हैं जो किताबें हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है होती हैं। अरे वाह भाई वाह, हमें पता ही नहीं था। संजू की पसंदीदा गजल जो है जनाब दीपक राग, उन्होंने कहा हम आपको भी डेडिकेट कर देते, लेकिन अब हमें पता चल गया है भाई ये संजू की बड़ी पसंदीदा है। और कहती हैं कि जिन्हें हमसे मोहब्बत होती है ना, वो हमारे कहने के बावजूद भी हमें छोड़ कर नहीं जाते। क्या बात ही है, ये फैक्ट है। वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, हकीकत है। अगर आपको मोहब्बत होगी ना तो आप अपने जिससे मोहब्बत करते हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। अजी मैंने बीच में एक बात भी की थी, खैर जी इनका इक्तिबास पूरा पढ़ते हैं। कहती है जिन्हें हमसे मोहब्बत होती है ना, वो हमारे कहने के बावजूद भी हमें छोड़ कर नहीं जाते, वो हमेशा हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो हमारी तकलीफ को समझते हैं, वो हमारे लफ्जों पर नहीं जाते, वो हमारे जज्बों से वाकिफ होते हैं, हमारी मुस्कुराहट में छुपे दर्द को महसूस कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें दिल से चाहते हैं। और जो आपको दिल से चाहता है वो बारिश में भी आपके आंसू पहचान लेता है। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं, वो हमें अपनी रूह का हिस्सा समझते हैं, वो हमारी तकलीफ पर उदास हो जाते हैं और हमारी खुशी से खिल उठते हैं। ये एहसास है जो कि संजू आपने अभी बयान किया है इस इक्तिबास में, बड़ा जबरदस्त ये एहसास है। और ये वही एहसास है जो कि हकीकत में सच्ची मोहब्बत में इंसान को होता है। वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लग गई, दिखाई देने लगी है ये, मैं लगा मरने। वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगी। वाह वाह वाह वाह, क्या शेर है भाई, जबरदस्त। जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन ने ये शेर भेजा है, और ये भी एक एहसास है यार, ये एक ऐसा खूबसूरत एहसास है कि बस जिसके साथ गुजरती है उसी को ये एहसास होता है कि वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा,
ज़ाहिर है महबूब ही गुजरा है उसको देखते हुए, और उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक महसूस करते हुए कहती है कि मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगी, वाह भाई दिखने लगी, इस पर मैं अटक रहा हूं खामखा। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। आपका फन शो अलग होता है, गजल शो अलग, बिल्कुल ऐसा ही है जमीन, फन शो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और जो हमारा ये शो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो क्यों ना हम इनके भी कुछ इंतखाब जो है वो शामिल करें, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त ज़ौक रखती हैं शेर व शायरी के हवाले से। दिन निकले तो सोचती हूं कैसे गुजरेगा, शाम हो तो तेरी याद में गुजर जाती है। वाह वाह वाह, ये जमीन के मैं आपको इंतखाब जो है वो आपको सुना रहा हूं, और भी हैं इनके इंतखाब। और कहती हैं कि जरा सी देर मोहब्बत से इख्तलाफ किया, अजियतों ने कई दिन मेरा तवाफ किया, बिछड़ते वक्त उसे क्या वजाहतें देती, सो दिल से गर्द हटाई न शीशा साफ किया। वाह वाह, जैसे भी मैंने सिखाया निभाने का हुनर, जिसे भी मैंने सिखाया निभाने का हुनर, उसी ने मेरी रफाकत से इन्हराफ किया। वाह, मुझे चराग बनाकर मेरे मुकद्दर ने तमाम उम्र हवा को मेरे खिलाफ किया, मुझे चराग बनाकर मेरे मुकद्दर ने, वाह वाह, तमाम उम्र हवा को मेरे खिलाफ किया। हमारे होते हुए है हुनर कहां हमको, हमारे होते हुए बेहुनर कहा हमको, मेरे तो ख्वाब जमाने ने, मेरे तो खूब जमाने ने इतराफ किया। क्या हो गया मुझे, हमारे होते हुए बेहुनर कहा हमको, मेरे तो खूब जमाने ने इतराफ किया। मेरा हिसाब झुकाए न बेटियां तेरी, कसम खुदा की तुझे इसलिए माफ किया। कोमल जोया का ये इंतखाब जो कि जबीन की जानिब से आया, मगर इसका आखिरी जो मिसरे थे उनमें मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, लेकिन शुरू के जो है मिसरे कमाल के थे। ये भी मुझे ये वाला शेर बड़ा पसंद आया कि मुझे चराग बनाकर मेरे मुकद्दर ने तमाम उम्र हवा को मेरे खिलाफ किया। वाह वाह वाह भाई, बहुत खूब बहुत खूब। और भी शामिल करेंगे इनके इंतखाब। फातिमा नूर आ गई है हमारी बहन और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें मुस्कुराती रहें। गुल साहब आज फुल मूड में है, कहते हैं दिल की हर बात जुबानी लिखना, दिल की हर बात जुबानी लिखना, इसको कहते हैं कहानी लिखना।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। अच्छा जनाब, इस ट्रैक से पहले मैंने आपको एक इंतखाब सुनाया था महजबीन का, तो उसमें एक शेर मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसकी तसीह करते हुए उन्होंने मुझे भेजा, तो उसको मैं दोबारा आपको जरा सुनाता हूं। जरा सी देर मोहब्बत से इख्तिलाफ किया, अजियतों ने कई दिन मेरा तवाफ किया, बिछड़ते वक्त उसे क्या वजाहतें देती, सो दिल से गर्द हटाई ना शीशा साफ किया। जिसे भी मैंने सिखाया निभाने का हुनर, उसी ने मेरी रफाकत से इन्हिराफ किया। मुझे चराग बनाकर मेरे मुकद्दर ने तमाम उम्र हवा को मेरे खिलाफ किया। और जहां पर मैं अटका था, हमारे होते हुए भी हुनर कहां हमको, हमारे होते हुए भी हुनर कहां हमको, मरे तो खूब जमाने ने एतराफ किया। वाह वाह भाई वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तसी करने का मेरी। और जनाब, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, और आपको ये भी बता दूं कि महजबीन जो हैं वो माशाल्लाह से शायरा भी हैं, और ये खूबसूरत इजाफा है। हमारे हमीद गुल साहब भी शायर और ये भी शायरा, और इसके साथ साथ हमारे एक वक्त ऐसा था कि काफी शौरा जो हैं वो मेरी पजीराई के लिए जो है वो अपने इंतखाब, अपने कलाम जो है वो शो में शामिल करते थे, तो बड़ा ममनून खुसूसी तौर पर तो हमारे हमीद गुल साहब का कि उनका साथ अभी तक मेरे साथ जारी और सारी है, और महजबीन साहिबा को मैं खुश आमदीद कहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका एक शेर जो है वो आपकी समातों की नजर कर रहा हूं कि दिल के जिंदान से तूने मुझको निकाला क्यों था, यूं ही करना था जो दर्द बदर तो संभाला क्यों था। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। और फातिमा नूर मेरी बहना जो है वो कह रही है, नदीम भाई आप कैसे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको और आपके वाले साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे, और बहुत दिन बाद मैं मैसेज कर रही हूं आपको। तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद मेरा ख्याल है आप देना चाह रही हैं 12 रबीउल अव्वल की। और शो बहुत अच्छा करते हैं हम, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका शो। तारीफें लिखी हुई हैं मेरी प्यारी सी बहन ने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और संजू ने कहा है जनाब कि आज का शो भी अच्छा रहा माशाल्लाह से, बहुत बहुत शुक्रिया संजू। और आपसे भी सजता है, आपके बड़े खूबसूरत इंतखाब होते हैं, इक्तबास होते हैं, और इक्तबास वैसे मुझे बड़े पसंद आते हैं खुसूसी तौर पर रूहे मन के, और आज का आपका सिग्नेचर रूहे मन जो है वो नहीं आया। और आखिरकार जो है हमारे अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब का भी मैसेज आ गया है, तो उसको भी शामिल कर लेते हैं। वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, कल इस्लामाबाद से मुझे बंदा नाचीज के गरीब खाने पर मेहमान तशरीफ लाए हुए थे, जिसकी वजह से कल का प्रोग्राम ना सुन सका, और पता नहीं मेरा मैसेज जो है वो शामिल शो हुआ है या नहीं। आज का प्रोग्राम तमाम बड़े जौक और शौक से सुन रहे हैं, और इस्लामाबाद में भी बड़े जौक और शौक से सुनते हैं, आपके पुराने फैन हैं। आज का प्रोग्राम आपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया, और समी को, अयूब लाला को, और नसीम कुरैशी, इमरान रियाज और मेरे वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में उन्होंने अपना अकीदत भरा सलाम पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जनाब आपसे इजाजत भी चाहनी है, और हमारी प्यारी सी आंटी भी शायद सुन रही हूं, ये कल हम आपको इंशाल्लाह कंफर्म करेंगे हमारी प्यारी सी आंटी सुन रही है या नहीं सुन रही, लेकिन अगर आंटी आप सुन रही हैं तो आपकी पसंदीदा गजल जो है वो कुछ ही देर में जो है जरूर चलेगी। इसके साथ ही जनाब आपसे चाहूंगा इजाजत, और जाते जाते अपनी पसंद की एक बहुत ही प्यारी सी गजल है वो आप लोगों की समातों की नजर करूंगा। मुसर्रत नजीर साहिबा की आवाज है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी।
آپ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی جناب کل, اور کل کا انداز بالکل ہی مختلف ہوگا, آپ سب کو یہ پتا ہے. اور ان کی آواز ذرا ختم ہو جائے کیونکہ انہوں نے شروع میں کچھ بولا ہے. ہائے ہائے مسرت نذیر صاحب. تو خیر جی, یہ غزل مجھے ویسے پتہ نہیں کیوں پسند ہے, مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب بھی سنتا ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو یہ میں اپنی جانب سے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.